0: मंडे मंडे मंडे ब्लडी फुली मंडे हमारा खून चूसने के लिए आता है, ऐसे हमें महसूस होता है, लेकिन इतना बुरा भी ये नहीं होता है। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एंड आज है मंडे, और मंडे का नाम सुनते ही अक्सर लगता है कि यार वीकेंड का कम्फर्ट का खत्म हो गया और एक लंबी रेस शुरू हो गई। लेकिन एक बात याद रखो, हर मंडे एक नई कहानी लिखने का मौका मिलता है हमें। सोचो अगर आप हर मंडे को कम्प्लेन करते हो तो पूरा हफ्ता कंप्लेन करते हुए निकल जाता है, लेकिन अगर आपने मंडे को एक फ्रेश स्टार्ट माना तो पूरा हफ्ता एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकल ही जाएगा। लाइफ एक ब्लैंक नोटबुक की तरह है और मंडे उसका पहला सफा, जो लिखना है जैसे लिखना है वही आपके हाथ में है। बस छोटी सी प्लानिंग और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी मेहनत और देखो फिर तो आपके सपने पूरे करने में मदद करेगा। तो छोड़ो मंडे ब्लूज और अपने अंदर एक नई शुरुआत जगाओ, क्योंकि हर मंडे एक नई उम्मीद है, एक नया चांस है और कुछ बदलने की ताकत लेकर आता है। तो दोस्तों इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के शो का आगाज करते हैं, मंडे को तहे दिल से स्वागत करते हैं और कुछ देर के बाद लौट कराते हैं आपको और ढेर सारी बातें बताने के लिए। सो

का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजी अब 90.8 एफएम। कभी कभी जिंदगी मैदान नहीं परीक्षा होती है, हर बार गिरने के बाद उठना, बस वही से असली खेल शुरू होता है। राहुल भी ऐसा एक लड़का था। 3 बार इंटरव्यू दिया, 3ों बार रिजेक्ट हो गया। लोगों ने कहा शायद तेरे बस की बात नहीं है। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना, बंद मत करना। एक दिन थककर उसने आईने में खुद को देखा और बोला अगर मैं आज रुक गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उस दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, हर रिजेक्शन को सबक की तरह लेना। और 4थी बार जब उसी कंपनी के गेट से अंदर गया तो डर के नहीं तैयारी के साथ गया। इस बार नतीजा अलग था, रिजल्ट में उसका नाम था। लोगों ने कहा कमाल कर दिया यार, पर राहुल मुस्कुराया और कहा कमाल नहीं किया, बस आखिरी बार भी कोशिश की। कभी हारो तो याद रखना मेरे दोस्तों, जीतने वाले हमेशा वही नहीं होते जो पहले नंबर पर आते हैं, कभी कभी वो भी होते जो हार के भी फिर से मैदान में डटे रहते हैं, क्योंकि सच्चा बाजीगर वही है जो आखिरी कोशिश तक खेलना नहीं छोड़ता। इसलिए कहते हैं कि हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। तो ये कहानी याद रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा और सुनते रहिएगा। किस्सों का कारवां आरजे अदनान के साथ ऑन एमजी अब 90.8 एफएम।

गुड मॉर्निंग मेरे सुकून के साथियों, क्या हाल चाल, नींद तो पूरी हो गई ना। आरजे अदनान आपके साथ है आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए और नींद को टाटा बाय बाय करवाने के लिए इन द शो। देखो यार, शो के स्टार्टिंग में ना तो मैं आपको गिफ्ट जीतने का मौका देता हूँ, क्योंकि आपने पास गिफ्ट बहुत है भाई। मैं तो चाहता हूँ यार कि आप लोग बस गिफ्ट जीतते रहे और मुस्कुराते रहे और बहुत आपके घरों में खुशी आ रहे। तो लेकिन गिफ्ट जीतने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी ना। तो उसके लिए क्या करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और मेरे पहेलियों का जवाब देना है। और इस गेम का नाम है और यहाँ पर मैं आपको पहली पूछूंगा और आप मुझे उसका जवाब बताना। तो आज की पहली कुछ ऐसी है कि भैया मैं हूँ 3 पंख का, 4 महीने पाता आराम, बिजली का प्रवाह हूँ मैं सहता, घंटों में चलता ही रहता, बताइए बताइए मैं कौन हूँ। फिर से एक बार दोहराता हूँ, भैया मैं हूँ 3 पंख का, 4 महीने पाता आराम, बिजली का प्रवाह हूँ मैं सहता, घंटों में तो चलता ही रहता, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका जवाब है, आप बताओगे ना मुझे, मैं थोड़ी बताऊंगा। तो जल्दी कीजिएगा, जवाब दीजिएगा 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर फिर से दोहराता हूँ 9359320080। जल्द से जल्द जवाब दे, गिफ्ट जीतिए और मुस्कान की चमकान बरकरार रखिएगा। की मुस्कुराना, कुछ देर के बाद लौट कर आता हूँ, आप जब तक जवाब देना और सुनते रहना। Oh.

चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये इमोशंस होती है। सुबह की नींद हो, ऑफिस का स्ट्रेस हो, या फिर बारिश का मूड, या फिर चिलचिलाती गर्मी में भी हम चाय तो पीते ही है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है, और एक कटिंग चाय सब सेट कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम चाय में नहीं है, उसके साथ जो हम खाते हैं ना, उसमें असली गेम होता है। रोज चाय के साथ ऑयली बिस्किट, नमकीन, चिप्स और फ्राइड स्नैक्स, बॉडी क्विकली बोलती है भाई टेस्ट तो अच्छा है पर थोड़ा रहम भी खा ले हम पर। तो सवाल यह है कि चाय के साथ टेस्टी भी और हेल्दी भी ऐसा क्या खा सकते हैं? तो सबसे सिंपल जवाब है रोस्टेड चना, प्रोटीन भी, क्रंच भी, मखाना भी मस्त ऑप्शन है। थोड़ा रोस्ट करो, हल्का मसाला डालो और चाय के साथ फुल हेल्दी वाइब। अगर घर में पोहा, उपमा या बॉइल्ड कॉर्न है तो वो भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, पेट भी भरेगा और एनर्जी भी आएगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाय के साथ जो लोग कहते हैं कि मैं सुट्टा पीता हूँ, ओहो, और यार चाय और सुट्टे का मजा जिसे समझ आया उसके लिए सब मोह माया है। ऐसा जो मानते हैं तो भाई तुम कब मोह मायों में खो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। चाय के साथ जो सुट्टा पीते हैं ना, तो उनकी लाइफ बहुत डेंजर चल रही है। इस वजह से सुट्टा अवॉइड कीजिएगा, बस चाय पीजिएगा। अब मैं कितना भी बोलूं आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम है बताना, वही मैं बता रहा हूँ, वरना एक दिन धुएं के साथ आप भी उठ जाओगे। और हाँ, ड्राई फ्रूट को इग्नोर मत करो, दो बादाम, थोड़े पीनट्स या वॉलनट, चाय का लेवल भी क्लासी और हेल्थ भी एकदम परफेक्ट रहेंगी। मतलब जब आप चाय पीते हो तो उस वक्त आप ये सब कुछ खा सकते हो आफ्टर चाय, ताकि पूरा मैनेज रहे आपका सिस्टम, और बाकी मुस्कान की चमकान बरकरार रखो, हेल्दी रहो और सुनते रहो।

0: फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर आरजी अदनान तुमच्या सोबत आहे.
1: ऑल इज वेल आरजी अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम तुमची फरमाइश पूर्ण करायला. सो आज गाने की फरमाइश आई है प्रीत देशमुख की तरफ से.

क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाना है यार ये। तलत महमूद एंड लता मंगेशकर जी की आवाज में छाया इस फिल्म से गाना है, एंड भाई ने फरमाइश की है जिनका नाम है प्रीत, और भाई का नाम भी बहुत ही प्यारा है प्यारे गाने की तरह। तो चलिए फिर आप भाई की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। आनी हो तुम जिस सुधा का फरमाइश असल तरह हमारा व्हाट्सएप करा 9359320080 या व्हाट्सएप नंबर वर नंबर पुनः एक दायका 9359320080 आनी आयकत रहा।

एक बार फिर अपने शहर में साइबर फ्रॉड हुआ एक बुजुर्ग के साथ और उनके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और पिछले एक दो वीक से हम देख रहे हैं कि अपने शहर में साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा ही हुआ है। उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया बैंक का, जिस बैंक में उनका अकाउंट था उस बैंक से एक मैसेज आया। हालांकि वो मैसेज फ्रॉड था, गलत था, लेकिन वो बुजुर्ग को समझ में नहीं आया वो क्या है। उस मैसेज में एक एपीके फाइल थी, तो उन्हें लगा बैंक की तरफ से आया है, ओपन करता हूँ। और जैसे उन्होंने वो फाइल ओपन की तो उनका मोबाइल और उनका अकाउंट पूरी तरीके से हैक हो चुका था। अकाउंट से तकरीबन 24 लाख रुपए फुर हो चुके थे एक एपीके फाइल से, यानी कि 24 लाख का नुकसान एक क्लिक में हो गया। उनकी जिंदगी भर की कमाई थी, रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी आसानी से गुजारने के लिए उन्होंने ये रखी थी, बट एक फाइल ने इतना सारा नुकसान करवा दिया। अब सवाल उठता है कि एपीके फाइल क्या होती है। देखो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के लिए एपीके फाइल यूज की जाती है। और ये फाइल अगर आपके व्हाट्सएप पर आ रही है तो इसको कैसे पहचाने, तो उस डॉक्यूमेंट के आगे .apk ऐसा लिखा होता है। अगर ऐसा कुछ आपको दिखा तो वो एपीके फाइल है, ये समझिएगा और उसको डाउनलोड मत कीजिएगा। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि हम तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गूगल ऑलरेडी ना तो कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसको स्कैन करता है, चेक करता है कि ये ऐप है या फिर कोई वायरस है या कोई फ्रॉड है, उसके बाद ही वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। और आपके व्हाट्सएप पर या फिर मेल पर ऐसी फाइल आपके पास आई एपीके फाइल, तो वो वायरस होता है या फिर हैकिंग का एक नया तरीका है। इसी वजह से कहते हैं कि एपीके फाइल व्हाट्सएप पर आने वाली डाउनलोड मत कीजिएगा। जैसा इन अंकल के साथ हुआ, सो इसीलिए अपना मोबाइल सेफ तरीके से यूज कीजिएगा। और एक नंबर याद रखिए, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके आपको जो हेल्प चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है अबाउट साइबर सेफ्टी के बारे में। 1930, बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।

0: आप एयरटेल यूज करते होगे तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। हेलो मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। मतलब बैड न्यूज ऐसी नहीं है कि एयरटेल बंद होने वाला है, एयरटेल का 5G नेटवर्क बहुत अच्छा ऐसा कहा जाता है और एयरटेल की जो 5G सर्विस है वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ग्रुप में एक बंदे के पास एयरटेल 5G होता है अनलिमिटेड वाला और उसी के हॉटस्पॉट के ऊपर 4-5 दोस्त मोबाइल अपना यूज करते हैं। घर पर अगर एयरटेल का सिम हो 5G अनलिमिटेड तो उसी के ऊपर वर्क फ्रॉम होम भी चलता है, लैपटॉप चलता है, टीवी चलती है, तो ये अनलिमिटेड वाला डेटा बहुत यूज होता है। तो ये बात अब एयरटेल को थोड़ी खटकने लगी थी और उन्होंने अब डिसाइड किया है कि कोई भी हमारा नेटवर्क फ्री में यूज नहीं कर पाएगा और इसीलिए 20 जुलाई यानी कि आज से एयरटेल अपनी जो 5G सर्विस है अनलिमिटेड वाली वो हॉटस्पॉट्स के ऊपर पूरी तरीके से बंद करने वाला है। हॉटस्पॉट्स के जरिए इंटरनेट यूज करने का ट्राई किया तो उसके प्लान से 5G सर्विस रिमूव कर दी जाएगी, ऐसा भी एयरटेल ने कहा है। और इससे हो क्या रहा था कि एक बंदा रिचार्ज मारता है और उसके हॉटस्पॉट के ऊपर 4-5 लोग अपना इंटरनेट यूज करते हैं 5G वाला, वो भी फ्री में, तो इस वजह से एयरटेल का थोड़ा नुकसान हो रहा था। तो ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है और ये ऑफिशियल तरीके से एयरटेल ने अनाउंस किया है। अब एयरटेल ने ऐसा डिसीजन लिया है तो इसका देखते देखते जियो भी ऐसा डिसीजन ले सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसा हुआ है कि जो कुछ जियो ने किया है वही एयरटेल ने किया, जो एयरटेल ने सर्विस लाई है वही जियो ने लाई है, तो ये एक दूसरे का देखकर कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेते ही है। तो एयरटेल ने लिया है, जियो भी ले सकता है, जो फ्री का इंटरनेट यूज करते थे उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। और इस डिसीजन की वजह से कितने लोग अब अपना सिम चेंज करेंगे ये भी देखने वाली बात है। सो याद रखिए चीज एंड बाकी स्टे ट्यून्ड।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar।

0: आता इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 48.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, NCC, छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी, NCC, सिडको. व्हिजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503

0: education is the right choice, it doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patekar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 9371714254.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट।

0: चा इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, NCC छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंट ची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी, N6 सिडको. विजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503 08 2913.

0: On MTM 90.8 FM.
1: किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJ अदनान। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूँ आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आए गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: Education is the right choice. It doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patekar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 9371714254.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
4: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
3: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
4: ऍडमिशन्स ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। अब तो पूरी नींद हो गई आपकी, उठ गए होगे, फ्रेश वगैरह तो हो गए होगे और अपने अपने कामों पर निकल रहे होगे, बरोबर ना। ये रूटीन है आपका, आरजी अदनान आपके साथ है इन द शो। ऑल इज वेल आरजी अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और बात कुछ ऐसी है कि शो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पहेली पूछा था, उस गेम का नाम है और पहली कुछ ऐसी थी कि भैया मैं हूँ 3 पंख का, 4 महीने पाता आराम, बिजली का प्रवाह मैं सहता, घंटों में बस चलता ही रहता, बताओ मैं कौन हूँ। जिसका जवाब है पंखा, फैन। जी हाँ, 3 तो उसको पंखे होते हैं मतलब प्लेट्स, और 4 महीने आराम पाता, यानी कि सर्दियों के मौसम में हम कम ही पंखा यूज करते हैं और बिजली से वो चलता है और घंटों बस चलता ही रहता है, तो इसका जवाब है फैन यानी कि पंखा। और जवाब एकदम सही दिया है ऋषिकेश पंत ने। सो कांग्रेचुलेशन ऋषिकेश पंत, आज आप विनर बन चुके हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो ऋषिकेश भाई बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों आप भी ना तो ऐसे गिफ्ट जीत सकते हो, बस मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए, गिफ्ट जीतते रहिए और मुस्कान की चमकान बरकरार रखिए और सुनते रहिए।

0: आपण इंग्लिश फ्रेंच जर्मन किंवा जॅपनीज शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक संस्कृत मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय
1: तर मग एमजीएम युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे
0: अवेलेबल कोर्सेस बी ए ऑनर्स इन इंग्लिश एम ए इन इंग्लिश मराठी हिंदी उर्दू अँड संस्कृत पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जॅपनीज पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन यासोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
0: किंवा कॉल करा 9763679245 9665353515 और 9371714259
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप टेस्टी स्टार्टर्स मलाई टिक्का कबाब चिकन तंदूरी मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी रूफटॉप एम्बियंस अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स मीना

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. Arjay and Nanak, a morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: तुला इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. विजिट mgmu.ac.in. कॉल 9503082913.
7: हर दिल की आवाज बने.
8: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है.
7: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे.
8: ये दूरियां,
7: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात. MGM 90.8 FM, साथ है तुम

0: If education is the right choice, it doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patrikar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 937171-4254.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? Institute of Information and Communication Technology, MGM University मध्ये मिळवा Future Ready प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
4: B.Tech in Computer Science and Engineering, B.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning, B.Tech in Information Technology, B.Tech in Data Science,
5: PG, M.Tech in AI and ML, M.Tech Data Science and Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर Diploma in Cyber Security and Digital Forensic.
4: Admissions open. For more information call on 9404-94299.

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94 नेटिव FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: शहबाज बनी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: FGM 90.8 FM साथ है।

सीता आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका सोमवार अच्छा बीता होगा। दिन भर की भागदौड़, ऑफिस, पढ़ाई या घर के काम के बाद अब वक्त है थोड़ा खुद के लिए रुकने का, मुस्कुराने का और इस खूबसूरत शाम का आनंद लेने का। अक्सर लोग कहते हैं कि सोमवार सबसे मुश्किल दिन होता है, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा हफ्ता भी बेहतर बन जाता है। इसलिए आज की शाम को सिर्फ एक दिन का अंत मत समझिए, बल्कि आने वाले शानदार हफ्ते की शुरुआत, उम्मीदों की शुरुआत मानिए। अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताइए, दोस्तों से बात कीजिए, अपनी पसंद का संगीत सुनिए या फिर एक कप चाय के साथ खुद को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। छोटी छोटी खुशियां ही बड़े दिनों को यादगार बनाती है। तो मुस्कुराइए, तनाव को थोड़ा किनारे रखिए और खुद से कहिए, ये हफ्ता मेरा है और मैं इसे बेहतरीन बनाऊंगी। इस खूबसूरत सोच के साथ आपकी सोमवार की शाम रहे खुशियों, सुकून और एनर्जी से भरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार गानों की ओर, क्योंकि अच्छी शाम का सबसे अच्छा साथी है अच्छा म्यूजिक। सो हैप्पी मंडे इवनिंग और सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, NCC, छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस, सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. विजिट mgmu.ac.in. कॉल 9503 08 2913.
7: Auditorium.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज की दुनिया में मोबाइल, लैपटॉप और वीडियो गेम हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चीज कहीं पीछे छूटती जा रही है और वो है मैदान में जाकर खेलना। फिजिकल गेम्स यानी क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन या फिर शाम की छोटी सी दौड़, ये सिर्फ खेल नहीं है बल्कि हमारी सेहत के सबसे अच्छे साथी है। जब हम मैदान में खेलते हैं तो शरीर फिट रहता है, मन खुश रहता है और तनाव भी कम होता है। इतना ही नहीं, टीम के साथ खेलने से हम एक दूसरे का साथ देना, हार जीत को स्वीकारना और मिलकर आगे बढ़ना भी सीखते हैं। यही बात इस जिंदगी में बहुत काम आती है। अगर आप दिन भर काम या पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि रोज कम से कम 30 मिनट किसी न किसी आउटडोर एक्टिविटी के लिए जरूर निकालिए। और अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें सिर्फ मोबाइल नहीं मैदान की ओर भी जरूर भेजिए। याद रखिए, स्क्रीन पर जीती गई बाजी कुछ पल की खुशियां देती है, लेकिन मैदान में खेला गया खेल शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। तो आइए आज ही एक छोटा सा संकल्प ले, थोड़ा कम स्क्रीन टाइम और थोड़ा ज्यादा प्ले टाइम। अभी इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं MJ 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: education is the right choice, it doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patekar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 9371714254.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं अगर सपने छोटे होंगे तो मंजिल भी छोटी ही मिलेगी, इसलिए जिंदगी में हमेशा बड़े सपने देखिए क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। आज जो लोग दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कभी एक सपना देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस सपने पर भरोसा किया और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। अगर आपका सपना बड़ा है तो रास्तों में मुश्किलें भी आएगी, लोग सवाल भी करेंगे, कभी कभी आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन याद रखिए सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें हालात नहीं हौसले आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि खुद से कहिए मैं कोशिश करूंगी और ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हर दिन की एक छोटी सी कोशिश आपको आपके बड़े गोल्स की ओर करीब ले जाएगी। तो दोस्तों खुद से एक वादा कीजिए, सपने बड़े देखेंगे, मेहनत पूरी करेंगे और हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। इसी पॉजिटिव सोच के साथ मुस्कुराइए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। अब हम सुनेंगे कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजी 94.8 FM। साथ है तो बात

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं पैसा जिंदगी की जरूरत है, लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? इसी सोच को मजेदार अंदाज में सामने लाता है ये गाना सबसे बड़ा रुपया। इस गाने का संदेश हमें याद दिलाता है कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई बेहतर कमाई और बेहतर जिंदगी चाहता है। पैसा हमारी जरूरतें पूरी करता है, हमें सुविधाएं देता है और कई सपनों को सच करने में मदद भी करता है, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम रिश्तों, ईमानदारी, सेहत और खुशियों की कीमत कभी ना भूले, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है लेकिन अपने लोगों का प्यार और भरोसा सबसे बड़ी दौलत होती है। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, लेकिन जिंदगी का असली संतुलन भी बनाए रखिए। जब मेहनत, ईमानदारी और खुशियाँ साथ हो तभी सफलता का मजा भी दोगुना हो जाता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब वक्त है एक ऐसे गाने का जो मुस्कुराने पर मजबूर करेगा और सोचने पर भी। सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी to visit mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट admission in B pharmacy second year, avail attractive scholarships,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
6: ऍडमिशन ओपन MGM University School of Engineering and Technology। Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज हम एक ऐसी उपलब्धि के बारे में बात करेंगे जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में आयोजित 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत के सभी पांचों छात्रों ने गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया। सबसे खास बात ये रही कि भारत ने इस शानदार प्रदर्शन के साथ चीन, रूस, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों के साथ संयुक्त रूप में विश्व में पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का ये प्रदर्शन सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि ये दिखाता है कि हमारे युवा विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि भारत के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब हमारी पूरी टीम ने 100% गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले ये उपलब्धि साल 2018 में मिली थी। पिछले 10 वर्षों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है। हमारे छात्र हर बार गोल्ड या सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए इन होनहार छात्रों की मेहनत, लगन और सफलता को सलाम करें। उम्मीद है कि उनकी ये उपलब्धियां देश के लाखों बच्चों को विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

0: डॉक्टर इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546. MGM यूनिवर्सिटी, NC छत्रपती संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंट ची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी N6 सिडको. विजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503082913.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। तो आखिरकार मंडे को अलविदा कहने का समय आ गया है। उम्मीद है कि आपका सोमवार नई ऊर्जा और नए इरादे के साथ शुरू हुआ होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मंडे सबसे मुश्किल दिन होता है, लेकिन सच तो ये है कि अगर सोमवार अच्छा निकल जाए तो पूरा हफ्ता आसान लगने लगता है। अब जब सोमवार खत्म हो रहा है तो एक मिनट रुक कर खुद से पूछिए, आज आपने क्या नया सीखा और कौन सा काम कल के लिए बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज के छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है। इसलिए अगर आज सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल एक नया मौका लेकर आता है। तो इंतजार करिए, हर शाम अपने दिन को छोटा सा रिव्यू करिए, जो अच्छा हुआ उसके लिए खुद की तारीफ करें और जो नहीं हुआ उसे सुधारने की कोशिश करें और वो कल बेहतर करने का संकल्प करें। तो दोस्तों, अब दिल से कहिए गुड बाय मंडे और वेलकम एक नई उम्मीद, नया जोश और नए अवसरों से भरे मंगलवार को। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर नया दिन आपको अपने सपनों के और थोड़ा करीब ले जाता है। सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अच्छी शुरुआत आधी जीत के बराबर होती है, लेकिन अगर शुरुआत पूरे हफ्ते की प्लानिंग से हो तो सफलता के मौके और भी बढ़ जाते हैं। अक्सर हम बिना किसी योजना के हफ्ता शुरू कर देते हैं, फिर काम बढ़ते जाते हैं, समय कम पड़ने लगता है और तनाव भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर रविवार की शाम या सोमवार की सुबह सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल कर पूरे हफ्ते की प्लानिंग करें तो फर्क साफ दिखाई देता है। सबसे पहले अपने 3 सबसे जरूरी काम तय कीजिए, फिर उन्हें दिन और समय के हिसाब से बांट दीजिए। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्से में पूरा करिए ताकि वो मुश्किल ना लगे। इसके साथ ही अपने लिए थोड़ा समय भी जरूर निकालिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या अपनी पसंदीदा कोई शौक को पूरा करना हो, क्योंकि अच्छी प्लानिंग सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि बेहतर जीवन जीने के लिए भी होती है। याद रखिए, हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर हफ्ते की सही दिशा तय होना बहुत जरूरी है। तो इस हफ्ते एक छोटा सा संकल्प लीजिए, बिना प्लान नहीं बल्कि प्लान के साथ शुरुआत करेंगे। यकीन मानिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े नतीजे लेकर आते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ अमेजिंग गानों की ओर, ओनली ऑन MGM 94.8 FM। साथ है तो
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्ष तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860671913 0। MGM पेट केअर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
6: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar।

एक बार फिर अपने शहर में साइबर फ्रॉड हुआ एक बुजुर्ग के साथ और उनके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और पिछले एक दो वीक से हम देख रहे हैं कि अपने शहर में साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा ही हुआ है। उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया बैंक का, जिस बैंक में उनका अकाउंट था उस बैंक से एक मैसेज आया। हालांकि वो मैसेज फ्रॉड था, गलत था, लेकिन वो बुजुर्ग को समझ में नहीं आया वो क्या है। उस मैसेज में एक एपीके फाइल थी, तो उन्हें लगा बैंक की तरफ से आया है, ओपन करता हूँ। और जैसे उन्होंने वो फाइल ओपन की तो उनका मोबाइल और उनका अकाउंट पूरी तरीके से हैक हो चुका था। अकाउंट से तकरीबन 24 लाख रुपए फुट हो चुके थे एक एपीके फाइल से, यानी कि 24 लाख का नुकसान एक क्लिक में हो गया। उनकी जिंदगी भर की कमाई थी, रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी आसानी से गुजारने के लिए उन्होंने ये रखी थी, बट एक फाइल ने इतना सारा नुकसान करवा दिया। अब सवाल उठता है कि एपीके फाइल क्या होती है। देखो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के लिए एपीके फाइल यूज की जाती है। और ये फाइल अगर आपके व्हाट्सएप पर आ रही है तो इसको कैसे पहचाने, तो उस डॉक्यूमेंट के आगे .apk ऐसा लिखा होता है। अगर ऐसा कुछ आपको दिखा तो वो एपीके फाइल है, ये समझिएगा, और उसको डाउनलोड मत कीजिएगा। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि हम तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गूगल ऑलरेडी ना तो कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसको स्कैन करता है, चेक करता है कि ये ऐप है या फिर कोई वायरस है या कोई फ्रॉड है, उसके बाद ही वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। और आपके व्हाट्सएप पर या फिर मेल पर ऐसी फाइल आपके पास आई एपीके फाइल, तो वो वायरस होता है या फिर हैकिंग का एक नया तरीका है। इसी वजह से कहते हैं कि एपीके फाइल व्हाट्सएप पर आने वाली डाउनलोड मत कीजिएगा। जैसा इन अंकल के साथ हुआ, सो इसीलिए अपना मोबाइल सेफ तरीके से यूज कीजिएगा। और एक नंबर याद रखिए, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके आपको जो हेल्प चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है अबाउट साइबर सेफ्टी के बारे में। 1930, बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।

0: डॉक्टर इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजी नगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको. व्हिजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503 08 2913. Jadoo.

आप एयरटेल यूज करते होगे तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। हेलो माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। मतलब बैड न्यूज ऐसी नहीं है कि एयरटेल बंद होने वाला है। एयरटेल का 5G नेटवर्क बहुत अच्छा ऐसा कहा जाता है और एयरटेल की जो 5G सर्विस है वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ग्रुप में एक बंदे के पास एयरटेल 5G होता है अनलिमिटेड वाला और उसी के हॉटस्पॉट के ऊपर 4-5 दोस्त मोबाइल अपना यूज करते हैं। घर पर अगर एयरटेल का सिम हो 5G अनलिमिटेड तो उसी के ऊपर वर्क फ्रॉम होम भी चलता है, लैपटॉप चलता है, टीवी चलती है, तो ये अनलिमिटेड वाला डेटा बहुत यूज होता है। तो ये बात अब एयरटेल को थोड़ी खटकने लगी थी और उन्होंने अब डिसाइड किया है कि कोई भी हमारा नेटवर्क फ्री में यूज नहीं कर पाएगा और इसीलिए 20 जुलाई यानी कि आज से एयरटेल अपनी जो 5G सर्विस है अनलिमिटेड वाली वो हॉटस्पॉट के ऊपर पूरी तरीके से बंद करने वाला है। हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट यूज करने का ट्राई किया तो उसके प्लान से 5G सर्विस रिमूव कर दी जाएगी, ऐसा भी एयरटेल ने कहा है। और इससे हो क्या रहा था कि एक बंदा रिचार्ज मारता है और उसके हॉटस्पॉट के ऊपर 4-5 लोग अपना इंटरनेट यूज करते हैं 5G वाला, वो भी फ्री में। तो इस वजह से एयरटेल का थोड़ा नुकसान हो रहा था, तो ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है और ये ऑफिशियल तरीके से एयरटेल ने अनाउंस किया है। अब एयरटेल ने ऐसा डिसीजन लिया है तो इसका देखते देखते जियो भी ऐसा डिसीजन ले सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसा हुआ है कि जो कुछ जियो ने किया है वही एयरटेल ने किया, जो एयरटेल ने सर्विस लाई है वही जियो ने लाई है। तो ये एक दूसरे का देखकर कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेते ही है। तो एयरटेल ने लिया है, जियो भी ले सकता है। जो फ्री का इंटरनेट यूज करते थे उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही और इस डिसीजन की वजह से कितने लोग अब अपना सिम चेंज करेंगे ये भी देखने वाली बात है। सो याद रखिए चीज एंड बाकी स्टे ट्यून्ड।

0: आता इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन

0: आता इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017088546. MGM University, NCT, छत्रपती संभाजीनगर.
3: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM University मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।